ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 16 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान के वायु आत्मरक्षा बल ASTF का कहना है कि तुत्तोरी प्रीफेक्चर के तट से दूर समुद्र में तैरता हुआ मलबा मिलने के बाद आशंका है कि मानव रहित टोही विमान ग्लोबल हॉक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह मलबा संभवतः उसी विमान का है। मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे प्रीफेक्चर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे विमान से ASTF का संपर्क टूट गया था। उन्होंने बताया कि उस समय विमान रडार से गायब हो गया था। विमान उत्तरी जापान के आओमोरी प्रीफेक्चर में मिसावा एयरबेस में तैनात था। ASDF ने बताया कि ग्लोबल हॉक सुबह करीब 10:20 पर बेस से रवाना हुआ था। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण मिशन पर नहीं था, उड़ान का उद्देश्य अभी तक उजागर नहीं किया गया है। ग्लोबल हॉक करीब 15 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा है और इसके पंखों का फैलाव 40 मीटर है। यह लगभग 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और उच्च रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करके लगभग 20,000 मीटर की ऊंचाई से निगरानी मिशन

अध्यक्ष निशिमुरा यासुतोशी के पद बरकरार रहे। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष काजियामा हिरोशी को अब जनरल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य कैबिनेट उप सचिव मोराई हिदेकी को संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकारी कार्यवाहक महासचिव हागीउदा कोइची, पार्टी संगठन और चुनाव अभियान मुख्यालय के अध्यक्ष मात्सुनो हिरोकाजू और जनसंपर्क मुख्यालय की अध्यक्ष सुजुकी ताकाको के पदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ताकाइची ने कहा है कि उनका लक्ष्य एक ऐसा ढांचा स्थापित करना है जो पार्टी और सरकार दोनों की ताकत का पूरी तरह से लाभ उठा सके, ताकि उन प्रमुख नीतिगत बदलावों को हासिल किया जा सके जिनका उन्होंने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था। जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता किहारा मिनोरू ने सर्वदलीय सांसदों के एक समूह को बताया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का समर्थन करती है। आईसीसी के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। किहारा मिनोरू ने मंगलवार को संसद में मानवाधिकार कूटनीति पर पुनर्विचार हेतु सर्वदलीय संसदीय संगठन के सदस्यों से मुलाकात में यह टिप्पणी की। सांसद सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से आईसीसी अध्यक्ष आकाने तोमोको पर लगे प्रतिबंधों को शीघ्रता से हटाने का अनुरोध करे। आकाने जापानी नागरिक हैं। समूह ने मंगलवार को किहारा को एक मांग पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया है कि समूह अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करता है। इसमें जापान सरकार से प्रतिबंधों के खिलाफ स्पष्ट विरोध दर्ज कराने और उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग करने का आग्रह किया गया है। समूह ने प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई से भी आह्वान किया है कि वे इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में आईसीसी के लिए जापान के समर्थन की बात कहें। किहारा ने जवाब में कहा कि सरकार आईसीसी का लगातार समर्थन करती है क्योंकि यह कानून के शासन को सुनिश्चित करता है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के लगभग 3 सप्ताह बाद इस क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रभावित समुदायों के लिए दीर्घकालिक सहायता की मांग की है। नेपाल में नुकसान का आकलन और स्थानीय जरूरतों का सर्वेक्षण कर रहे एक जापानी समूह ने सोमवार को ऑनलाइन बैठक की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हिरोआकी ने दिखाया कि कैसे आपदा में पुल बह जाने के बाद रस्सी और अन्य साधनों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा, सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे सहायता पहुंचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए सड़कों से आवाजाही बहाल करना राहत कार्यों के लिए आवश्यक है। एक अन्य जापानी गैर सरकारी संगठन के अधिकारी ने अपने परिजन खो देने वाले लोगों से बात करने के बारे में बताया और उनसे पूछा कि वे आगे क्या करेंगे। शांति स्वयंसेवी संगठन की हागी हारा हिरोको ने कहा, जब लोग अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आजीविका बहाल करना अत्यंत आवश्यक होगा। जापान सरकार ने पहली बार विदेशी निवासियों सहित विदेशों में रह रहे जापानी नागरिकों के स्वामित्व वाली भूमि और इमारतों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। मंगलवार को जारी सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि देश में पंजीकृत भूमि का लगभग 0.06% का स्वामित्व विदेशी निवासियों और निगमों के पास है। भूमि स्वामित्व में 27.2% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है, उसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% हिस्सा है। सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि जापान में पंजीकृत भवनों में से लगभग 0.2% का स्वामित्व विदेशी निवासियों और कंपनियों के पास है। भवनों के स्वामित्व में 44.2% के साथ चीन की

0: सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। ताइवान 18.6% के साथ दूसरे स्थान पर है और अमेरिका 11.3% के साथ तीसरे स्थान पर है। जापान सरकार ने पंजीकरण संबंधी जानकारी की भी जांच की ताकि उन भूमि और भवन मालिकों की पहचान की जा सके जो विदेशी नागरिक या कंपनी हो सकते हैं। जांच से पता चलता है कि उनके पास पंजीकृत भूमि का 0.46% और पंजीकृत भवनों का 1.07% है। सरकार विदेशी नागरिकों से संबंधित भावी नीतियों के लिए इन निष्कर्षों को संदर्भ के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के वायु आत्मरक्षा बल ASDF का कहना है कि तोत्तोरी प्रीफेक्चर के तट से दूर समुद्र में तैरता हुआ मलबा मिलने के बाद आशंका है कि मानव रहित टोही विमान ग्लोबल हॉक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह मलबा संभवतः उसी विमान का है। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारू जी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।
3: दो देशिता का?
2: सुबारशी कात्ता देसु।
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।
1: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
0: ये सुनकर हारूजी ने पूछा,
3: दो देशता का?
1: कैसी थी?
0: मिया ने उत्तर दिया,
2: सुबारशी कात्ता देसु।
1: बहुत अच्छी थी।
0: तब हारूजी ने कहा,
3: सोरे वा योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
2: शशी वो तकसन तोरीमाशिता।
1: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
2: मीते कुदासाई।
1: देखिए,
0: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
2: आ, कोरे, यूकी सान।
1: अरे, ये तो यूकी जी हैं।
0: हारूजी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
3: यूकी सान?
1: यूकी जी?
0: वो तस्वीर पियानो वादक यूकी की थी, जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता,
1: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: पियानो
0: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
3: एनसो
0: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
3: पियानो नो एनसो
0: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
1: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ, उसके बाद आया है
3: किकिनी,
1: जिसका अर्थ है सुनने के लिए, और
3: इकिमाशिता
1: है क्रिया
3: इक,
1: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
3: किकिनी इकिमाशिता
0: यानी सुनने गई थी में
3: किकिनी
0: बना है क्रिया
3: किक
0: यानी सुनना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
3: किकिमास।
1: उसमें से मास हटाया तो बना
3: किकि,
1: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
0: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
1: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
3: पियानो नो एनसो किकिनी,
1: और उसके बाद जोड़ा
3: इकिमाशिता।
0: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: किकी नी इकिमाशिता, पियानो नो एनसो ओ किकी नी इकिमाशिता।
1: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
4: क्यों दोको नी इकिमाशिता का,
1: आज कहाँ गई थी।
0: इसमें
3: क्यों
0: का अर्थ है आज और
3: दोको
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहाँ।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
3: 原宿に服を買いに行きました。
1: कपड़े खरीदने हाराजुकु गई थी।
0: हाराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
3: फुकु
0: का अर्थ है कपड़े।
3: काईनी
0: बना है क्रिया
3: काउ
0: यानी खरीदना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
3: काईमास।
1: उसमें से मास हटाकर बना
3: काई
1: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हाराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का? हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता। हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
3: सुशी।
1: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
3: थाबेरु
1: और उसका मास रूप है
3: थाबेमास।
1: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
3: थाबे।
1: तो कोशिश कीजिए।
5: सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता।
0: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: सोमवार है
3: केत्सुयोबी।
1: मंगलवार है
3: कायोबी।
1: बुधवार है
3: सुयोबी।
1: बृहस्पतिवार है
3: मुकुयोबी।
1: शुक्रवार है
3: कियोबी।
1: शनिवार है
3: दोयोबी।
1: और रविवार है
3: निचियोबी।
0: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
3: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता।
0: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता। दो देशिता का?
4: सुबारशी कात्ता देसु।
2: सोरे वा योकात्ता देसु ने।
4: शशिन ओ ताकुसान तोरिमाश्ता। मीते कुदासाइ।
6: अ, कोरे युकी-सान।
2: युकी-सान?
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कामाकुरा की, जहां मिया पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: कामाकुरा टोक्यो से रेलगाड़ी से लगभग एक घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 800 वर्ष पहले वहाँ जापान का पहला सामुराई शासन शुरू हुआ था।
0: वहाँ का त्सुरुगाओ का हाचिमांगू श्राइन मिनामोतो सामुराई परिवार से संबंधित शिंतो मंदिर है। शहर के दूसरे सिरे पर भगवान बुद्ध की 11 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है।
1: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
0: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
1: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहाँ सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
0: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
7: この放送は
5: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan Tokyo

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 16 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानों से सुने समाचार। जापान के वायु आत्मरक्षा बल ASTF का कहना है कि तुत्तोरी प्रिफेक्चर के तट से दूर समुद्र में तैरता हुआ मलबा मिलने के बाद आशंका है कि मानव रहित टोही विमान ग्लोबल हॉक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह मलबा संभवतः उसी विमान का है। मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे प्रिफेक्चर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे विमान से ASTF का संपर्क टूट गया था। उन्होंने बताया कि उस समय विमान रडार से गायब हो गया था। विमान उत्तरी जापान के आओमोरी प्रिफेक्चर में मिसावा एयरबेस में तैनात था। ASDF ने बताया कि ग्लोबल हॉक सुबह करीब 10:20 पर बेस से रवाना हुआ था। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण मिशन पर नहीं था, उड़ान का उद्देश्य अभी तक उजागर नहीं किया गया है। ग्लोबल हॉक करीब 15 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा है और इसके पंखों का फैलाव 40 मीटर है। यह लगभग 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और उच्च रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करके लगभग 20,000 मीटर की ऊंचाई से निगरानी मिशन को अंजाम दे सकता है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाई ने बुधवार सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए कार्यकारी अधिकारियों की घोषणा की। यह कदम बृहस्पतिवार को होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले उठाया गया है। टोक्यो में पार्टी मुख्यालय में बुधवार सुबह 10 बजे जनरल काउंसिल की विशेष बैठक में नए अधिकारियों की आधिकारिक घोषणा की गई। उपाध्यक्ष आसोतारो, महासचिव सुजुकी शुनइची, नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कोबायाशी ताकायुकी और चुनाव रणनीति समिति के

संपर्क मुख्यालय की अध्यक्ष सुजुकी ताकाको के पदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ताकाइची ने कहा है कि उनका लक्ष्य एक ऐसा ढांचा स्थापित करना है जो पार्टी और सरकार दोनों की ताकत का पूरी तरह से लाभ उठा सके, ताकि उन प्रमुख नीतिगत बदलावों को हासिल किया जा सके जिनका उन्होंने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था। जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता किहारा मिनोरू ने सर्वदलीय सांसदों के एक समूह को बताया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का समर्थन करती है। आईसीसी के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। किहारा मिनोरू ने मंगलवार को संसद में मानवाधिकार कूटनीति पर पुनर्विचार हेतु सर्वदलीय संसदीय संगठन के सदस्यों से मुलाकात में यह टिप्पणी की। सांसद सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से आईसीसी अध्यक्ष आकाने तोमोको पर लगे प्रतिबंधों को शीघ्रता से हटाने का अनुरोध करे। आकाने जापानी नागरिक हैं। समूह ने मंगलवार को किहारा को एक मांग पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया है कि समूह अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करता है। इसमें जापान सरकार से प्रतिबंधों के खिलाफ स्पष्ट विरोध दर्ज कराने और उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग करने का आग्रह किया गया है। समूह ने प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई से भी आह्वान किया है कि वे इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में आईसीसी के लिए जापान के समर्थन की बात कहें। किहारा ने जवाब में कहा कि सरकार आईसीसी का लगातार समर्थन करती है क्योंकि यह कानून के शासन को सुनिश्चित करता है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के लगभग 3 सप्ताह बाद इस क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रभावित समुदायों के लिए दीर्घकालिक सहायता की मांग की है। नेपाल में नुकसान का आकलन और स्थानीय जरूरतों का सर्वेक्षण कर रहे एक जापानी समूह ने सोमवार को ऑनलाइन बैठक की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हिरोआकी ने दिखाया कि कैसे आपदा में पुल बह जाने के बाद रस्सी और अन्य साधनों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा, सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे सहायता पहुंचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए सड़कों से आवाजाही बहाल करना राहत कार्यों के लिए आवश्यक है। एक अन्य जापानी गैर सरकारी संगठन के अधिकारी ने अपने परिजन खो देने वाले लोगों से बात करने के बारे में बताया और उनसे पूछा कि वे आगे क्या करेंगे। शांति स्वयंसेवी संगठन की हागी हारा हिरोको ने कहा, जब लोग अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आजीविका बहाल करना अत्यंत आवश्यक होगा। जापान सरकार ने पहली बार विदेशी निवासियों सहित विदेशों में रह रहे जापानी नागरिकों के स्वामित्व वाली भूमि और इमारतों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। मंगलवार को जारी सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि देश में पंजीकृत भूमि का लगभग 0.06% का स्वामित्व विदेशी निवासियों और निगमों के पास है। भूमि स्वामित्व में 27.2% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है, उसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% हिस्सा है। सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि जापान में पंजीकृत भवनों में से लगभग 0.2% का स्वामित्व विदेशी निवासियों और कंपनियों के पास है। भवनों के स्वामित्व में 44.2% के साथ चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। ताइवान 18.6% के साथ दूसरे स्थान पर है और अमेरिका 11.3% के साथ तीसरे स्थान पर है। जापान सरकार ने पंजीकरण संबंधी जानकारी की भी जांच की ताकि उन भूमि और भवन मालिकों की पहचान की जा सके जो विदेशी नागरिक या कंपनी हो सकते हैं। जांच से पता चलता है कि उनके पास पंजीकृत भूमि का 0.46% और पंजीकृत भवनों का 1.07% है।

0: सरकार विदेशी नागरिकों से संबंधित भावी नीतियों के लिए इन निष्कर्षों को संदर्भ के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के वायु आत्मरक्षा बल ASDF का कहना है कि तोत्तोरी प्रीफेक्चर के तट से दूर समुद्र में तैरता हुआ मलबा मिलने के बाद आशंका है कि मानव रहित टोही विमान ग्लोबल हॉक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह मलबा संभवतः उसी विमान का है। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारू जी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: どうでしたか？
3: 素晴らしかったです。
2: それは良かったですね。
3: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
2: ゆうきさん？
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
2: निचियोबिनी पियानो नो एनसो किकी नी किमाश्ता।
1: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
0: ये सुनकर हारूजी ने पूछा,
2: दो देश्ता का?
1: कैसी थी?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: सुबारश्कात्ता देसु।
1: बहुत अच्छी थी।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: सरे वा योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
3: शशियो तकसन तोरिमाश्ता।
1: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
3: मीते कुदासाई।
1: देखिए।
0: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
3: आ, कोरे, युकी-सान।
1: अरे, ये तो युकी जी हैं।
0: हारूजी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
2: युकी-सान?
1: युकी जी?
0: वो तस्वीर पियानो वादक युकी की थी जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: पियानो नो एनसो किकी नी किमाश्ता,
1: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
2: पियानो
0: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
2: एनसो
0: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
2: पियानो नो एनसो
0: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
1: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ। उसके बाद आया है
2: किकिनी,
1: जिसका अर्थ है सुनने के लिए, और
2: इकिमाश्ता
1: है क्रिया
2: इक
1: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
2: किकिनी इकिमाश्ता
0: यानी सुनने गई थी में
2: किकिनी
0: बना है क्रिया
2: किक
0: यानी सुनना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
2: किकिमास।
1: उसमें से मास हटाया तो बना
2: किकी,
1: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
0: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
1: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
2: पियानो नो एनसो किकिनी,
1: और उसके बाद जोड़ा
2: इकिमाश्ता।
0: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
2: किकिनी इकिमाश्ता पियानो नो एनसो किकिनी इकिमाश्ता।
1: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
4: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का?
5: हराजुकु नी फुकु वो काई नी इकिमाश्ता।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
4: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का?
1: आज कहां गई थी?
0: इसमें
2: क्यों
0: का अर्थ है आज और
2: दोको
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहां।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
5: हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाशिता।
1: कपड़े खरीदने हराजुकु गई थी।
0: हराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
2: फुकु
0: का अर्थ है कपड़े,
2: काई नी
0: बना है क्रिया
2: काउ
0: यानी खरीदना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
2: काईमास,
1: उसमें से मास हटाकर बना
2: काई
1: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
2: क्यों दोको नी इकिमाशिता का? हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाशिता। हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाशिता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
2: सुशी।
1: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
2: थाबेरु
1: और उसका मास रूप है
2: थाबेमास।
1: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
2: थाबे।
1: तो कोशिश कीजिए।
6: सुशी ओ थाबे नी इकिमाशिता।
0: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: सोमवार है
2: केत्सुयोबि।
1: मंगलवार है
2: कायोबि।
1: बुधवार है
2: सुयोबि।
1: बृहस्पतिवार है
2: मुकुयोबी।
1: शुक्रवार है
2: कियोबी।
1: शनिवार है
2: दोयोबी।
1: और रविवार है
2: निचियोबी।
0: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
2: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाशिता,
0: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाशिता।
4: दो देशिता का?
3: सुबाराशिकात्ता देसु।
4: सोरे वा योकात्ता देसु ने।
3: शाशिन ओ ताकुसान तोरिमाशिता। मीते कुदासाई।
4: आ, कोरे युकी-सान।
7: युकी-सान? トラベルガイド।
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कामाकुरा की, जहां मिया पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: कामाकुरा टोक्यो से रेलगाड़ी से लगभग एक घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 800 वर्ष पहले वहाँ जापान का पहला सामुराई शासन शुरू हुआ था।
0: वहाँ का त्सुरुगाओका हाचीमांगू श्राइन मिनामोतो सामुराई परिवार से संबंधित शिंतो मंदिर है। शहर के दूसरे सिरे पर भगवान बुद्ध की 11 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है।
1: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
0: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
1: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहाँ सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
0: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
8: この放送は
6: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
7: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। नेपाल और चीन की सरहद पर शदीद सैलाब आने के तकरीबन 3 हफ्ते बाद इस इलाके में काम करने वाली बैन अल्कवामी गैर सरकारी तंजीमों या एनजीओस के नुमाइंदों ने मुतासरा आबादियों के लिए तवील मुद्दती मदद का मुतालबा किया है। नुकसानात की वसत का जायजा लेने और मकामी जरूरियात के सर्वे में मसरूफ अमल एक जापानी ग्रुप ने पीर के रोज ऑनलाइन ब्रीफिंग मुनाकिद की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हीरो आकी ने दिखाया कि आफत में पुल बह जाने के बाद किस तरह रस्सी और दीगर जराए से इमदादी सामान की तरसील की जा रही है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चीज ये है कि सड़कें कट चुकी हैं जिससे इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए सड़कों तक रसाई की बहाली बुनियादी शर्त बन चुकी है। एक और जापानी एनजीओ के एहलकार ने मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में ऐसे लोगों से अपनी बातचीत बयान की जिन्होंने अपने अहले खाना को खो दिया है। शांति रजाकार एसोसिएशन की मोहतरमा हागीहारा हिरोको ने कहा, जब तक लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकेंगे कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। इस लिहाज से जरिए माश की बहाली जरूरी होगी। जापानी हुकूमत ने पहली बार बैरून मुल्क मुकीम जिनमें जापानी शहरी भी शामिल हैं की मलकियत में मौजूद जमीनों और इमारतों के आदादोशुमार जारी किए हैं। मंगल को जारी किए गए सर्वे के नतायज जाहिर करते हैं कि मुल्क में रजिस्टर्ड अराजी का तकरीबन 0.06% बैरून मुल्क मुकीम अफराद और कारपोरेशनों की मलकियत है। 27.2% के साथ जमीन की मलकियत में सबसे ज्यादा हिस्सा अमरीका का है। इसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% है। सर्वे यह भी जाहिर करता है कि जापान में रजिस्टर्ड इमारतों में से तकरीबन 0.2% बैरून मुल्क मुकीम रहायशियों और कंपनियों की मलकियत है। चीन इमारतों की मलकियत में 44.2% के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद 18.6% के साथ ताइवान और 11.3% के साथ अमरीका का नंबर आता है। जापानी हुकूमत ने ऐसी जमीन और इमारत मालिकान की शनाख्त के लिए रजिस्ट्रेशन की मालूमात को भी देखा जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो गैर मुल्की शहरी और कंपनियां हैं। नतायज से पता चलता है कि रजिस्टर्ड अराजी का 0.46% और रजिस्टर्ड इमारतों का 1.07% उनकी मलकियत है। हुकूमत इन नतायज को गैर मुल्की शहरियों से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पॉलिसियां बनाने के लिए बतौर हवाला इस्तेमाल करने का इरादा रखती है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की एयर सेल डिफेंस फोर्स ASDF का कहना है कि एक बगैर पायलट जासूस तैयारा ग्लोबल हॉक मुमकिना तौर पर गिरकर तबाह हो गया है क्योंकि तोतोरी प्रीफेक्चर में साहिल के करीब समंदर में तैरता हुआ मलबा मिला है। हो सकता है कि मलबा इसी तैयारे का हो। और जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकायची सनाए ने जुमेरात को काबीना में रद्दोबदल से पहले बुध की सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई इंतजामी टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: टॉम और यूकी दोबारा मिल पाते हैं या नहीं, ये जानिए अगले सबक में।
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 16 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानो से सुने समाचार। जापान के वायु आत्मरक्षा बल ASTF का कहना है कि तुत्तोरी प्रिफेक्चर के तट से दूर समुद्र में तैरता हुआ मलबा मिलने के बाद आशंका है कि मानव रहित टोही विमान ग्लोबल हॉक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह मलबा संभवतः उसी विमान का है। मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे प्रिफेक्चर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे विमान से ASTF का संपर्क टूट गया था। उन्होंने बताया कि उस समय विमान रडार से गायब हो गया था। विमान उत्तरी जापान के आओमोरी प्रिफेक्चर में मिसावा एयरबेस में तैनात था। ASDF ने बताया कि ग्लोबल हॉक सुबह करीब 10:20 पर बेस से रवाना हुआ था। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण मिशन पर नहीं था, उड़ान का उद्देश्य अभी तक उजागर नहीं किया गया है। ग्लोबल हॉक करीब 15 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा है और इसके पंखों का फैलाव 40 मीटर है। यह लगभग 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और उच्च रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करके लगभग 20,000 मीटर की ऊंचाई से निगरानी मिशन को अंजाम दे सकता है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई ने बुधवार सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए कार्यकारी अधिकारियों की घोषणा की। यह कदम बृहस्पतिवार को होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले उठाया गया है। टोक्यो में पार्टी मुख्यालय में बुधवार सुबह 10 बजे जनरल काउंसिल की विशेष बैठक में नए अधिकारियों की आधिकारिक घोषणा की गई। उपाध्यक्ष आसोतारो, महासचिव सुजुकी शुनइची, नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कोबायाशी ताकायुकी और चुनाव रणनीति समिति के अध्यक्ष निशिमुरा यासुतोशी के पद बरकरार रहे। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष काजियामा हिरोशी को अब जनरल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य कैबिनेट उपसचिव मोराई हिदेकी को संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकारी कार्यवाहक महासचिव हागीउदा कोइची, पार्टी संगठन और चुनाव अभियान मुख्यालय के अध्यक्ष मात्सुनो हिरोकाजू और जनसंपर्क मुख्यालय की अध्यक्ष सुजुकी ताकाको के पदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ताकाइची ने कहा है कि उनका लक्ष्य एक ऐसा ढांचा स्थापित करना है जो पार्टी और सरकार दोनों की ताकत का पूरी तरह से लाभ उठा सके, ताकि उन प्रमुख नीतिगत बदलावों को हासिल किया जा सके जिनका उन्होंने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था। जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता किहारा मिनोरू ने सर्वदलीय सांसदों के एक समूह को बताया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का समर्थन करती है। ICC के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। किहारा मिनोरू ने मंगलवार को संसद में मानवाधिकार कूटनीति पर पुनर्विचार हेतु सर्वदलीय संसदीय संगठन के सदस्यों से मुलाकात में यह टिप्पणी की। सांसद सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से ICC अध्यक्ष आकाने तोमोको पर लगे प्रतिबंधों को शीघ्रता से हटाने का अनुरोध करे। आकाने जापानी नागरिक है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के लगभग 3 सप्ताह बाद इस क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रभावित समुदायों के लिए दीर्घकालिक सहायता की मांग की है। नेपाल में नुकसान का आकलन और स्थानीय जरूरतों का सर्वेक्षण कर रहे एक जापानी समूह ने सोमवार को ऑनलाइन बैठक की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हिरोआकी ने दिखाया कि कैसे आपदा में पुल बह जाने के बाद रस्सी और अन्य साधनों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा, सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे सहायता पहुंचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए सड़कों से आवाजाही बहाल करना राहत कार्यों के लिए आवश्यक है। एक अन्य जापानी गैर सरकारी संगठन के अधिकारी ने अपने परिजन खो देने वाले लोगों से बात करने के बारे में बताया और उनसे पूछा कि वे आगे क्या करेंगे। शांति स्वयंसेवी संगठन की हागी हारा हिरोको ने कहा, जब लोग अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आजीविका बहाल करना अत्यंत आवश्यक होगा। जापान सरकार ने पहली बार विदेशी निवासियों सहित विदेशों में रह रहे जापानी नागरिकों के स्वामित्व वाली भूमि और इमारतों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। मंगलवार को जारी सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि देश में पंजीकृत भूमि का लगभग 0.06% का स्वामित्व विदेशी निवासियों और निगमों के पास है। भूमि स्वामित्व में 27.2% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है, उसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% हिस्सा है। सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि जापान में पंजीकृत भवनों में से लगभग 0.2% का स्वामित्व विदेशी निवासियों और कंपनियों के पास है। भवनों के स्वामित्व में 44.2% के साथ चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। ताइवान 18.6% के साथ दूसरे स्थान पर है और अमेरिका 11.3% के साथ तीसरे स्थान पर है। जापान सरकार ने पंजीकरण संबंधी जानकारी की भी जांच की ताकि उन भूमि और भवन मालिकों की पहचान की जा सके जो विदेशी नागरिक या कंपनी हो सकते हैं। जांच से पता चलता है कि उनके पास पंजीकृत भूमि का 0.46% और पंजीकृत भवनों का 1.07% है। सरकार विदेशी नागरिकों से संबंधित भावी नीतियों के लिए इन निष्कर्षों को संदर्भ के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के वायु आत्मरक्षा बल ASTF का कहना है कि तोत्तोरी प्रीफेक्चर के तट से दूर समुद्र में तैरता हुआ मलबा मिलने के बाद आशंका है कि मानव रहित टोही विमान ग्लोबल हॉक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह मलबा संभवतः उसी विमान का है। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारू जी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।

0: どうでしたか？
1: 素晴らしかったです。
0: それは良かったですね。
1: 写真をたくさん撮りました。見てください。
2: あ、これ結城さん。
0: 結城さん、
3: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
4: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
1: निचियोबिनी पियानो नो एंसो किकिनी किमाश्ता।
3: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
4: ये सुनकर हारुजी ने पूछा,
0: दो देश्ता का?
3: कैसी थी?
4: मिया ने उत्तर दिया,
1: सुबारश कात्ता देसु।
3: बहुत अच्छी थी।
4: तब हारुजी ने कहा,
0: सरे वा योकात्ता देसु ने।
3: ये तो अच्छी बात है।
4: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
1: शशियो तकसन तोरिमाश्ता।
3: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
1: मीते कुदासाई।
3: देखिए।
4: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
2: आ, कोरे युकी-सान।
3: अरे, ये तो युकी जी हैं।
4: हारुजी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
0: युकी-सान?
3: युकी जी?
4: वो तस्वीर पियानो वादक युकी की थी, जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
3: आज का मुख्य वाक्य है,
1: पियानो नो एंसो किकिनी किमाश्ता,
3: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
4: इस वाक्य में
0: पियानो
4: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
0: एंसो
4: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
0: पियानो नो एंसो
4: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
3: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ। उसके बाद आया है
0: किकिनी,
3: जिसका अर्थ है सुनने के लिए, और
0: इकिमाश्ता
3: है क्रिया
0: इक,
3: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
4: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
0: किकिनी इकिमाश्ता
4: यानी सुनने गई थी में
0: किकिनी
4: बना है क्रिया
0: किक
4: यानी सुनना से।
3: इस क्रिया का मास रूप है
0: किकिमास।
3: उसमें से मास हटाया तो बना
0: किकी,
3: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
4: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
3: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
0: पियानो नो एंसो किकिनी,
3: और उसके बाद जोड़ा
0: इकिमाश्ता।
4: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
0: किकिनी इकिमाश्ता, पियानो नो एंसो किकिनी इकिमाश्ता।
3: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत, जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
5: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का?
6: हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
4: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
5: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का?
3: आज कहां गई थी?
4: इसमें
0: क्यों
4: का अर्थ है आज, और
0: दोको
4: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहां।
3: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
6: हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता,
3: कपड़े खरीदने हराजुकु गई थी।
4: हराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं, जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
0: फुकु
4: का अर्थ है कपड़े,
0: काई नी
4: बना है क्रिया
0: काउ
4: यानी खरीदना से।
3: इस क्रिया का मास रूप है
0: काइमास।
3: उसमें से मास हटाकर बना
0: काई,
3: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
4: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
0: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का? हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता। हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
3: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
7: सुशी।
3: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
7: थाबेरु
3: और उसका मास रूप है
7: थाबेमास।
3: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
7: थाबे।
3: तो कोशिश कीजिए।
8: सुशी ओ थाबे नी इकिमाशिता। सुशी ओ थाबे नी इकिमाशिता।
4: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
3: सोमवार है
7: केत्सुयोबी।
3: मंगलवार है
7: कायोबी।
3: बुधवार है
7: सुयोबी।
3: बृहस्पतिवार है
7: मुकुयोबी।
3: शुक्रवार है
7: कियोबी।
3: शनिवार है
7: दोयोबी।
3: और रविवार है
7: निचियोबी।
4: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
7: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी इकिमाशिता।
4: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
3: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。どうでしたか？素晴らしかったです。それは良かったですね。写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。ゆうきさん？
0: トラベルガイド。
4: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कामाकुरा की, जहां मिया पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
3: कामाकुरा टोक्यो से रेलगाड़ी से लगभग एक घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 800 वर्ष पहले वहाँ जापान का पहला सामुराई शासन शुरू हुआ था।
4: वहाँ का त्सुरुगाओ का हाचिमांगू श्राइन मिनामोतो सामुराई परिवार से संबंधित शिंतो मंदिर है। शहर के दूसरे सिरे पर भगवान बुद्ध की 11 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है।
3: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
4: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
3: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहाँ सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
4: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
9: NHK World, Radio Japan, Tokyo.

आदाब, एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरों के साथ वसीमा आबिद और खलील शिराजी हाजिर हैं। पेश खिदमत हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 16 सितंबर रात 9 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे की खबरें। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स एएसडीएफ का कहना है कि एक बगैर पायलट जासूस तैयारा ग्लोबल हाक मुमकिन तौर पर गिरकर तबाह हो गया है, क्योंकि तोत्तोरी प्रीफेक्चर में साहिल के करीब समंदर में तैरता हुआ मलबा मिला है। हो सकता है कि मलबा उसी तैयारे का हो। एएसडीएफ का तैयारे से राबता उस वक्त मुनक़ता हो गया जब ये मंगल की दोपहर 1 बजे के करीब प्रीफेक्चर के शुमाल में 50 किलोमीटर दूर बैन अलाक्वामी पानियों के ऊपर परवाज कर रहा था। उनका कहना था कि तैयारा उस वक्त रेडार से गायब हो गया। यह तैयारा शुमाली जापान के आओमोरी प्रीफेक्चर में मिसावा एयरबेस पर तैनात था। एएसडीएफ ने कहा कि ग्लोबल हॉक ने सुबह तकरीबन 10:20 पर इस अड्डे से उड़ान भरी थी। उनका कहना था कि यह तरबियती मिशन पर नहीं था, परवाज का मकसद जाहिर नहीं किया गया है। ग्लोबल हॉक तकरीबन 15 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा, जबकि इसके परों का फैलाव 40 मीटर है। ये तकरीबन 36 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है और हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 20,000 मीटर की बुलंदी से निगरानी के मिशन को अंजाम दे सकता है। जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकायची सनाए ने जुमेरात को काबीना में रद्दोबदल से पहले बुध की सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई इंतजामी टीम का ऐलान किया है। टोक्यो में पार्टी के हेडक्वार्टर में बुध की सुबह 10 बजे शुरू होने वाले जनरल काउंसिल के एक गैर मामूली इजलास में नई क्यादत के ओहदों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। नायब सदर आसोतारो, सेक्रेटरी जनरल सुजुकी शुन इची, पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के चेयरपर्सन कोबायाशी ताकायुकी और इंतखाबी हिकमत अमली कमेटी के चेयरपर्सन निशिमुरा यासुतोशी अपने ओहदों पर बरकरार रहे। पार्लिमानी उमूर के चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत सरंजाम देने वाले काजियामा हिरोशी को जनरल काउंसिल का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। साबिक डेप्यूटी चीफ काबीना सेक्रेटरी मुराई हिदेकी को पार्लिमानी उमूर कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। एग्जीक्यूटिव कायम मकाम सेक्रेटरी जनरल हागियोदा कोइची, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और मुहिम के हेडक्वार्टर के चेयरपर्सन मात्सुनो हिरोकाजू और शोबा ताल्लुकात आम्मा के चेयरपर्सन सुजुकी ताकाको भी अपने ओहदों पर बरकरार रहे। ताकाची ने कहा कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क कायम करना चाहती हैं जिसमें पार्टी और हुकूमत दोनों की ताकत से भरपूर अंदाज में इस्तेफादा करते हुए वो उन कलीदी पॉलिसी तब्दीलियों को अमली जामा पहना सकें जिनका उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में वादा किया था। जापानी हुकूमत के तर्जुमान आला ने गैर जानबदार कानून साजों के एक ग्रुप को बताया है कि हुकूमत बैन अलाक्वामी फौजदारी अदालत ICC की हिमायत करती है। ICC की सरबराह और दीगर हुक्काम पर अमरीका की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं। किहारा मिनोरू ने यह तबसरा मंगल को पार्लियामान में गैर जानबदार पार्लिमानी एसोसिएशन बराए नजरसानी इंसानी हकूक सिफारतकारी के अराकीन से मुलाकात में किया। ये कानून साज हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो दरख्वास्त करे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ICC की जापानी सरबराह अकाने तोमोको पर से पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करे। ग्रुप ने मंगल को दरख्वास्तों पर मुश्तमिल एक मुरासला किहारा के हवाले किया। मुरासले में कहा गया है कि वो अमरीकी पाबंदियों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसमें जापानी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो पाबंदियों के खिलाफ वाज़ह एहतजाज रिकॉर्ड कराए और इनकी फौरी वापसी का मुतालबा करे। ग्रुप ने वज़ीर आज़म ताकायची सनाए से भी मुतालबा किया कि वो रवा माह अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर में ICC के लिए जापान की हिमायत का इजहार करें। किहारा ने जवाब में कहा कि हुकूमत ICC की मुस्तकिल हिमायत करती है क्योंकि ये अदालत कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाती है।

0: ये खबरें एनएच वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। नेपाल और चीन की सरहद पर शदीद सैलाब आने के तकरीबन 3 हफ्ते बाद इस इलाके में काम करने वाली बैन अल्कवामी गैर सरकारी तंजीमों या एनजीओस के नुमाइंदों ने मुतासरा आबादियों के लिए तवील मुद्दती मदद का मुतालबा किया है। नुकसानात की वसत का जायजा लेने और मकामी जरूरियात के सर्वे में मसरूफ अमल एक जापानी ग्रुप ने पीर के रोज ऑनलाइन ब्रीफिंग मुनाकिद की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हीरो आकी ने दिखाया कि आफत में पुल बह जाने के बाद किस तरह रस्सी और दीगर जराए से इमदादी सामान की तरसील की जा रही है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चीज यह है कि सड़कें कट चुकी हैं जिससे इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए सड़कों तक रसाई की बहाली बुनियादी शर्त बन चुकी है। एक और जापानी एनजीओ के एहलकार ने मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में ऐसे लोगों से अपनी बातचीत बयान की जिन्होंने अपने अहले खाना को खो दिया है। शांति रजाकार एसोसिएशन की मोहतरमा हागिहारा हिरोको ने कहा, जब तक लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकेंगे कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। इस लिहाज से जरिए माश की बहाली जरूरी होगी। जापानी हुकूमत ने पहली बार बैरून मुल्क मुकीम जिनमें जापानी शहरी भी शामिल हैं की मलकियत में मौजूद जमीनों और इमारतों के आदादोशुमार जारी किए हैं। मंगल को जारी किए गए सर्वे के नतायज जाहिर करते हैं कि मुल्क में रजिस्टर्ड अराजी का तकरीबन 0.06% बैरून मुल्क मुकीम अफराद और कारपोरेशनों की मलकियत है। 27.2% के साथ जमीन की मलकियत में सबसे ज्यादा हिस्सा अमरीका का है। इसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% है। सर्वे यह भी जाहिर करता है कि जापान में रजिस्टर्ड इमारतों में से तकरीबन 0.2% बैरून मुल्क मुकीम रहायशियों और कंपनियों की मलकियत है। चीन इमारतों की मलकियत में 44.2% के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद 18.6% के साथ ताइवान और 11.3% के साथ अमरीका का नंबर आता है। जापानी हुकूमत ने ऐसी जमीन और इमारत मालिकान की शनाख्त के लिए रजिस्ट्रेशन की मालूमात को भी देखा जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो गैर मुल्की शहरी और कंपनियां हैं। नतायज से पता चलता है कि रजिस्टर्ड अराजी का 0.46% और रजिस्टर्ड इमारतों का 1.07% उनकी मलकियत है। हुकूमत इन नतायज को गैर मुल्की शहरियों से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पॉलिसियां बनाने के लिए बतौर हवाला इस्तेमाल करने का इरादा रखती है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की एयर सेल डिफेंस फोर्स ASDF का कहना है कि एक बगैर पायलट जासूस तैयारा ग्लोबल हॉक मुमकिना तौर पर गिरकर तबाह हो गया है क्योंकि तोतोरी प्रीफेक्चर में साहिल के करीब समंदर में तैरता हुआ मलबा मिला है। हो सकता है कि मलबा इसी तैयारे का हो। और जापान की वज़ीर-ए-आज़म ताकायची सनाए ने जुमेरात को काबीना में रद्दोबदल से पहले बुध की सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई इंतजामी टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।